0: नहीं नहीं सर,
1: नहीं नहीं
0: मार्च 20
1: रिसीव्ड।
0: चेक 6492 ज़ारा कर दीजिए।
1: कॉपी रोस्टर।